प्रदान किए गए हैं, जिससे कवरेज 56% तक पहुंच गया है। ये पेपर पे है, जमीन पे है नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा। राज्य को शेष लगभग 75 लाख घरों को कवर करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कार्यान्वयन में काफी तेजी लाने की भी आवश्यकता है। 2028 दिसंबर तक ही योजना को आगे बढ़ाया है, इसके लिए काम जल्दी से पूरा करना पड़ेगा। स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में नल जल कवरेज राष्ट्रीय औसत से कम है, हमारे बच्चों के लिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हर घर जल प्रमाणन सर्टिफिकेशन की स्थिति अत्यंत निराशाजनक है, किसी भी जिले ने पूर्ण प्रमाणन प्राप्त नहीं किया है। कुल 38,268 गांव में से केवल 2,691 गांव ही औपचारिक रूप से प्रमाणित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में जल जीवन मिशन के लिए कुल लागत 67.811 करोड़ है, जिसमें से केंद्र का हिस्सा 33,363 करोड़ है। 2019-20 से 2025-26 के दौरान राज्य को अब तक 24,645 करोड़ का केंद्रीय आवंटन किया गया है, जिसमें से केवल 13,000 करोड़ खर्च हुआ है, 53% ही खर्च हुए हैं। राज्य से उसके अंदर करीब करीब आपको 21,000 करोड़ रुपया और देने का बाकी है। राज्य के राज्यांश में देरी एवं आवश्यक दस्तावेज समय पर प्रस्तुत न होने के कारण 11,670 करोड़ की राशि अप्रयुक्त रही है। राज्य में कुल 10,986 स्वीकृत योजनाओं में से 4,022 रेट्रोफिटिंग योजना है। रेट्रोफिटिंग योजनाओं के लिए कोई केंद्रीय सहायता उपलब्ध नहीं होगी, इससे राज्य सरकार को स्वयं वहन करना होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2,775 करोड़ का संभावित आवंटन किया गया है, जो MOU अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन है। पश्चिम बंगाल को ONM पॉलिसी की अधिसूचना कर राष्ट्रीय समीक्षा बैठकों में जिला अधिकारियों को भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, जिसके अंदर DMs और कलेक्टर्स होने चाहिए। DPR लागत और IMIS के बीच लगभग 3,924 करोड़ की विसंगति का स्पष्टीकरण जल्द उपलब्ध कराया जाए। डुप्लीकेशन या रद्द किए गए कार्यों की लागत करीब 8,700 करोड़ है। इन कार्यों का एपेक्स कमेटी द्वारा सत्यापित वितरण प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य द्वारा कलेक्टर पेयजल संवाद के लिए कोई नामांकन नहीं दिया गया है। सुजल ग्राम संवाद में कोई भागीदारी नहीं की गई है। एपेक्स कमेटी की बैठक नहीं बुलाई गई है और जल अर्पण दिवस पर कोई अपडेट साझा नहीं किया गया है। माननीय सांसदों द्वारा दार्जिलिंग, कालीपुर और पुरुलिया राज्य में सबसे कम जिलों में क्रियान्वयन संबंधी उठाई गई चिंताओं की प्राथमिकता के आधार पर जांच भी होनी चाहिए। जो DPR में विसंगतता पाई गई है उसके बारे में भी स्टेट को बताया जा चुका है। जो ओवर साइड DPR होंगे उसका पैसा भी स्टेट को भुगतना पड़ेगा, वो भी यहाँ से नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो एक आपको मुख्यमंत्री जी मिले हैं तो बधाई के साथ बोलना चाहूंगा, गंगा नदी के ऊपर भी जो STP बनाने हैं तो हरिद्वार से लेकर बंगाल तक में सबसे कम काम उसी के ऊपर हुआ है। तो आपका जो पेज है उसके अंदर जो बताया गया था उस टाइम अधिकारियों द्वारा कि हमारे यहाँ लैंड नहीं है STP बनाने के लिए, तो गंगा में जो पानी जो जा रहा है गंदा पानी उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर गंगा शुद्ध नहीं हो पाएगी। तो STP के लिए अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप खरीद भी सकते हैं। बाकी जो स्टेट में जहाँ उनके पास जगह उपलब्ध नहीं थी तो उन्होंने खरीदी भी है, तो आप भी वो पॉलिसी तुरंत बना के वो STP का काम भी शुरू कर रही है। हम उसके लिए 100% पैसा देते हैं, मगर लैंड आपको देनी होती है, आप उसके लिए भी थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2024 सितंबर में एक आह्वान किया था और उन्होंने कहा था जल संचय जन भागीदारी को जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए, और उन्होंने कहा था कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए पानी के लिए और काम करना चाहिए, उसमें मदद करनी चाहिए। अभी तक हमारा करीब 89 लाख, हमारा टारगेट 1 करोड़ का, हम 1 करोड़ तक जाना चाहते हैं। इसके अंदर लोगों के द्वारा, और अभी तो जो जी राम जी में भी इसका व्यवस्था है कि जो आपके पास डार्क जोन होगा उस जिले में आपको 65% पैसा मनरेगा का कंपलसरी वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए खर्च करना है। जहां पर आपका सेमी क्रिटिकल जोन है वो जिला है, वहां पर आपको 40% जी राम जी का पैसा खर्च करना है, और जो सामान्य जिला है वहां पर भी आपको 30% पैसा जी राम जी का कंपलसरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए खर्च करना है। तो आप उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि

0: बारिश के पहले काम जितना जल्दी होगा तो उससे ज्यादा भी बारिश का फायदा उसको मिलेगा। हम चाहेंगे कि आपको जब भी एक टाइम होगा तो आपको एक 30-40 मिनट निकाल लिए अपने सभी कलेक्टर के साथ, आपके प्रेजेंस में हम वर्चुअल मीटिंग करके सभी कलेक्टर को भी ये सूचना देना चाहते हैं। तो आप उसके अंदर भी आपका टाइम जब भी हो आप बताइए, तो उस टाइम आपको शाम को रात को कभी भी हमें मीटिंग कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ये थोड़ी प्रायोरिटी में था, इसके लिए मैंने आपके एमओयू के साथ जोड़ा है। एमओयू के जो 19 कंडीशन है वो कैबिनेट ने मंजूर किया है, उसमें से रिलैक्सेशन देने का हमें किसी को भी अधिकार नहीं है। तो आपके सभी अधिकारियों को भी ये सोचना चली जाए कि ये करना ही है तो ही आगे आपको पैसा मिल पाएगा, और पैसा अभी है तो पैसा अवेलेबल है तो लेने के लिए आपको थोड़ा काम पेपर वर्क और फील्ड में भी थोड़ा करके करना पड़ेगा, तो उससे आपको काम भी जल्दी से दिखेगा। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे विश्वास है कि आप जिस तरह से काम करने के आदी है उसके कारण बंगाल में जो लोगों की अपेक्षा पूर्ण करने में आप कामयाब रहेंगे। हमारी भी अपेक्षा है कि हमारा जल जीवन मिशन और योजनाएं आपके यहाँ जल्दी से पूर्ण हो जाए, ये अपेक्षा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरी बात को मैं विराम देता हूँ।
1: जल सम्पद मंत्रकের सचिव अशोक के मीना বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে নিয়মিত ও নিরাপদে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া। এটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে জল সরবরাহ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আরও শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল করবে। জেলা প্রশাসনের ভূমিকা হবে নিয়মিত নজরদারি চালানো এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সাহায্য করা। এটি পশ্চিমবঙ্গ ও জলশক্তি মন্ত্রকের একটি যৌথ প্রকল্প হবে।
2: इस एमओयू का उद्देश्य यह है कि हम सिर्फ पाइपलाइन और ढांचा बनाने तक सीमित ना रहें, बल्कि हर घर तक पानी की नियमित, सुरक्षित और भरोसेमंद सेवा पहुंचाएं। यह एमओयू ग्राम पंचायत को सशक्त अधिकार और जिम्मेदारी देने की दिशा में बड़ा कदम है, ताकि गांव के स्तर पर ही बेहतर तरीके से हो सके। अब ग्राम पंचायत गाँव के भीतर पानी की पूरी व्यवस्था के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार बन सके। इसके साथ साथ जिलों में डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन मिशन बैठकों का समय पर होना भी बहुत जरूरी है, ताकि जिले के सभी गांवों के लिए सैचुरेशन प्लान बनाया जा सके और हर पंचायत को हर घर जल प्रमाणित किया जा सके। जिला प्रशासन की भूमिका निगरानी करने, नियमित समीक्षा करने और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद देने की होगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह एमओयू सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल और जल शक्ति मंत्रालय का साझा संकल्प है कि हर घर तक साफ, सुरक्षित और लगातार पानी पहुंचाने की व्यवस्था आने वाले समय में भी मजबूती से बनी रहे, और इससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का सपना हर घर निरंतर नल से जल हम सबके सामूहिक प्रयासों से अवश्य साकार होगा।
1: অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ভি সোমান্না, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিব মনোজ আগরওয়াল, পশ্চিমবঙ্গের প্রিন্সিপাল রেসিডেন্ট কমিশনার দুষ্যন্ত নারিয়ালা সহ রাজ্য ও কেন্দ্রের শীর্ষ আধিকারিকরা।
3: আজকের প্রসঙ্গে এবারের বিষয় ছিল বাংলায় জল জীবন মিশন, জলসঞ্চয় ও জন অংশগ্রহণ। গ্রন্থনায় অভিরূপ ভট্টাচার্য, শব্দ সম্পাদনায় সাধনা দাস বসু।
4: এতক্ষণ শুনলেন আজকের প্রসঙ্গ। আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে। শুরু হচ্ছে শহর কলকাতা।
5: গরমের তাপট কিছুতেই কমছে না, নাজেহাল শহরবাসী। চাতক প্রায় অবস্থা প্রত্যেকের, চলছে দিন গোনা। কবে নামবে কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি? এর মধ্যে গত কয়েকদিনে শহরের বিভিন্ন জায়গায় আয়োজিত হয়েছে বেশ কিছু অনুষ্ঠান। আমরা উপস্থিত থেকেছি কয়েকটি অনুষ্ঠানে। সেই সব অনুষ্ঠানের খবরাখবর নিয়েই শুরু করছি আজকের শহর কলকাতা। এই অনুষ্ঠানে থাকছে কবিতা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গত 6ই জুন চারুবাসনা সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় কবিতা উৎসব। উপস্থিত ছিলেন রণজিৎ দাস, গৌতম চৌধুরী, অংশুমান কর, মন্দাক্রান্তা সেন, সৌরভ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। পরিবেশিত হয় কবিতা পাঠ, গান। আলোচনা ও বিতর্ক সভায় অংশ নেন বিশিষ্টজনেরা।

0: এখন খবর দিল্লি থেকে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মাই বিকাশ মেহরোত্রা। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉ जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भारत को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बात की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य के पास अमरीकी सैन्य हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए ईरान जिम्मेदार है और अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में की गई जब एक ड्रोन ने रणनीतिक जलमार्ग के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर के चालक दल को बचाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए

व्यवहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और फिर निर्बाध रूप से दुनिया भर के गंतव्यों के लिए आगे की यात्रा कर सकते हैं। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।